ये हिचलता फिजी रेडियो और मैं हूँ प्रोग्राम स्टार्टर अविनेश। हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ मस्त सॉन्ग्स, कुछ जानकारी और बहुत सारी बातें। साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो के साथ ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं प्रेम डायरेक्टर विनेश और मेरे साथ में शामिल हो चुके हैं साहिल। थैंक यू सो मच साहिल फॉर कमिंग, जो आज हमारे जो पैनलिंग वो संभालेंगे। और साथ साथ में शिवनल शर्मा इज आल्सो हियर। और हम कुछ गेस्ट को इंतजार कर रहे हैं एंड दे आर काइंड ऑफ कमिंग टू आवर स्टूडियो और वेरी सून हम उनसे बात करना जो शुरू करेंगे। और आपको बता दें आज हम चर्चा करेंगे दुर्गा पूजा के विषय में। दुर्गा पूजा इट्स नथिंग न्यू फॉर क्राइस्टचर्च, आई नो हर साल आप लोग भाग लेते हो और इस बार भी आपको मौका मिलने वाला है। कहाँ पे जाना है, कब शुरू होता है और क्या क्या होने वाला है, ये पूरी जानकारी आप सुनोगे आज हमारे इस जो इस ब्रॉडकास्ट में। और जो लोग फेसबुक में हमसे जुड़ते हैं तो हम फेसबुक पे स्विच ऑन करेंगे थोड़ी देर में, देन जस्ट कीप वाचिंग आउट फॉर दैट एज वेल। जी हाँ, कुछ प्रोग्राम भी है जो ये क्राइस्टचर्च बंगाली कम्युनिटी ने कुछ योजना बनाई है, उसके विषय में भी हम आपको बतलाने वाले हैं। सो जस्ट कीप लिसनिंग, आपको वो सब समाचार इसमें मिलेगा सुनने के लिए। और वैसे अगर देखा जाए क्राइस्टचर्च में, देन आई थिंक द वेदर हैज बीन प्लेइंग अप। कल रात्रि को आई थिंक कुछ वर्षा वगैरह हुई थी, सुबह कुछ ठंड थी एंड देन धीरे धीरे

0: अबाउट इन मॉर्गेज.
1: हाँ जी,
0: अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की, एंड दैट्स वेयर स्क्वायरल कम्स इन. आई थिंक इट्स क्वाइट हाईली रैंक्ड इन क्राइस्टचर्च. आई थिंक अगर आप कंपेयर करेंगे देन आई थिंक यू आर काइंड ऑफ कैटरिंग क्वाइट आई थिंक परसेंटेज.
1: यस, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. इट्स बीइंग एन ऑनर टू स्पॉन्सर क्राइस्टचर्च दुर्गा पूजा being organized by Christchurch Bengali community, and thank you for having me here. Definitely, Squirrel jo mortgages hai, wo New Zealand ka sabse bada mortgage originator hai. We are just not mortgage advisory firm, hum lenders bhi hain. Humare paas, we lend our own money. To Christchurch mein, yes, definitely one of the top.
0: Yeah, definitely. And when you say lenders, then like, are you guys kind of competing with other lenders and banks and interest rates वगैरह आप लोगों का? How do people work that out?
1: हाँ जी, definitely. जैसे for example कोई development finance देख रहा है ना, किसी ने एक दो या तीन या पांच छह townhouse बनाने हैं, वो चीजों में bank mostly fund नहीं करता. तब आप non bank lenders देखते हो, जहाँ पे
0: second tier हम जिसे बोलते हैं.
1: हाँ जी, तो squirrel आता है even for first home buyers, या for example किसी ने मान लो एक दो दिन में auction में जाना है ना, so we have a really cool product कि हम 24 hours में खुद approval दे सकते हैं, जो कि काफी major banks उसको
0: देखेंगे. बट वी सडनली नीड दैट मनी बिकॉज हमारे जो पैसे इंडिया में बचे हुए हैं, इट माइट टेक अनदर मंथ. तो इन बिटवीन जो फाइनेंस की जरूरत होती है, देन ऑब्वियसली स्क्वायरल कैन कम इन बिटवीन, मे बी दे कैन हेल्प यू आउट. बट आपको बात करना पड़ेगा आप पर्सन लाइक आरी. और जैसे आप एडवाइजर्स भी हो, आप लेंडर्स भी हो, तो हाउ डू यू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट?
1: कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं है, जो कि लैंडिंग टर्म है. जैसे आप बैंक की बात करें ना, उधर भी एक क्रेडिट टीम होती है जो अप्रूवल एक लैंड टीम मेंबर अप्रूव करके फिर क्रेडिट टीम के पास जाता है. ऐसे ही हमारे पास भी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट क्रेडिट टीम है.
0: जी हां, डेफिनेटली. तो अगर आप एडवाइस दे रहे हो देन डेफिनेटली यू आर नॉट लैंडिंग, आपका लैंडिंग टीम कोई और होगा.
1: हाँ जी, अप्रूवल हम देते हैं, देन वो सेकंड अप्रूवल क्रेडिट टीम से आती है.
0: क्रेडिट टीम से आती है. तो आप ऐसे लेकर अब घूम नहीं रहे हो ना साथ में?
1: नहीं नहीं,
0: आपका लेडिंग टीम के पास है. जी हाँ, ओके. सो देयर यू गो, सो दैट्स द अदर वे टू एक्सप्लेन टू यू. सो यू कम टू आरी, ही डज द पाइपा वर्क, बट पैसे इसके पास नहीं है. ही गोस टू द अदर टीम. सो वो टीम है, वो आपको एक्चुअली पैसे देंगे, एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू जंप थ्रू द हुप्स एंड डू द पाइपा वर्क, जो कुछ भी करना पड़ता है. बट आई थिंक वन एडवांटेज जो मैं हरदम नोटिस करता हूँ इन गोइंग टू प्रोफेशनल्स, आपको खुद बहुत कम हाथ पैर चलाना पड़ता है ना, बिकॉज यू डू टेक केयर मोस्ट ऑफ द टास्क फॉर देम.
1: डेफिनेटली अगर कोई बिजी है ना, एवरी पर्सन इज वर्किंग,
0: जी अभी तो सबके
1: पास नहीं टाइम होता, तो वो सारा लेग वर्क कौन सी बैंक आपके लिए अच्छी रहेगी वो सारा हम देख लेते हैं. जहाँ की आप एक पर्टिकुलर बैंक के पास जाके वो अपना ही प्रोडक्ट बताएंगे ना, वो नहीं बता

0: Program. So we've got Chetna here welcoming her to the studio, and हमारे साथ निशी भट भी ज्वाइन हो चुकी है धन्यवाद आने के लिए, एंड वी आर गोइंग टू हैव सो मेन एज वेल. तो चलो सब कमिटी मेंबर्स
1: इधर और जगह है.
0: जी हाँ, तो थैंक यू सो मच, एंड वी आर गोइंग टू ग्रीट द कमिटी. सो दिस इज द हार्ड वर्किंग कमिटी, और हम बात कर रहे हैं दुर्गा पूजा की, जो 17th October 2026 है, विच इज़ नॉट फार ऑफ बिकॉज अक्टूबर शुरू हो चुका है. शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट अक्टूबर हैज स्टार्टेड एंड द टाइम इज 9 AM आपको पहुँचना है, एंड इट ऑल स्टार्ट. तो समय ना बताइए कि ये जो 9 o'clock आप डोर ओपन कर रहे हो, तो
2: हम लोग एक्चुअली इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ फ्री इवेंट टू एवरीबॉडी, एंड वी वेलकम ईच एंड एवरी पर्सन, नॉट ओनली द इंडियन बैकग्राउंड बट एवरीबॉडी एल्स. स्टार्ट विद आवर पूजा सेटअप इज ऑलरेडी गोज ऑन फ्रॉम 9 o'clock. अपार्ट फ्रॉम दैट, देन इमीडिएटली स्टार्ट्स द सम किड्स एक्टिविटी. वी हैव अ मैजिक शो, वी हैव अ सम स्मॉल मिनिएचर ट्रेन काइंड ऑफ विल बी रनिंग अराउंड दैट इवेंट सेंटर. And we do have other children activities, so like a face painting, ballooning and other stuff will be going on. And after that, we'll be having there will be some performances, cultural programs. In between, we have foods. So that's, there will be a vegetarian free food for everybody. And it's been prepared by one of our member. So it's been like a whole heart is going on to that food, pretty much. And and then after that, we'll be having about 2.5 hours of cultural program, where various cultural programs will be displayed. Not only the Indian, there are multi-country sort of
0: जी हाँ, जो परफॉर्मेंस सभी कंट्री से, और आई थिंक ये जो कम्युनिटी ग्रो हो रहा है, नथिंग इज मल्टी एथनिक जो कॉन्सेप्ट है अर्पण जी, वेन एवर आई कम वी आर मिसिंग अमित टुडे और अनदर अर्पण ऑफ कोर्स, एंड देयर आर मेनी अदर कमिटी मेंबर्स, बट आई नो देयर इज अनदर प्रोग्राम दे आर प्रिपेयरिंग फॉर, जिसकी जानकारी वी शुड बी एक्चुअली गिविंग इट, बट आई थिंक विल वेट फॉर द लेडीज टू टॉक, तो फिर हम उससे पूछेंगे. इसलिए मैंने बोला कि हम जितना बात कर सकते हैं बात कर ले बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग टू देम.
3: गुड डिसीजन विनय जी, आप जानते हैं कि वंस लेडीज स्टार्ट टॉकिंग, उसके बाद
0: कहाँ
3: मौका मिलने वाला है इन लोगों को
0: तो बात करने का. जी हाँ, तो सब उनसे बात करने से पहले क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज योर फेवरेट डिश?
2: माय फेवरेट डिश एक्चुअली द मिक्स वेज, व्हाट इज बीन प्रिपेयर्ड विद ऑल द मिक्स वेजिटेबल्स विद एंड द खिचड़ी,
0: दैट इज ऑब्वियसली बंगाली डिश.
2: करेक्ट.
0: जी हाँ, आपको फिश एंड चिप्स ये सब नहीं पसंद?
2: डेफिनेटली, एंड आई पर्सनली आई डोंट लाइक दोस फिश एंड चिप्स आइदर. This yeah. kind of, but also on top of this, we do have a gulab jamun, which is a traditional, you know, the Bengalis are famous for.
0: Yeah. So if you are coming to do the puja on that day, 17, just follow Soumen, just eat what he eats, yes, and you'll definitely not go wrong. So then, don't go to McDonald's and KFC, just come straight and try something different. So aapko kuch alag milega khane ke liye. So Arpan ji, before you go to the ladies, from you, I know you are all prepared. कोई इंडिया से या बंगाल से कोई आ रहा है इस फेस्टिवल के लिए?
4: बंगाल से ऑलरेडी आ चुके हैं. अमित के पेरेंट्स अंकल और डैड आ चुके हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए और साउथ आइलैंड के दूसरे रीजन से भी लोग आते हैं.
0: और जो पंडित जी जो कोई पूजा वूजा कराने का सब तैयार हो चुका है?
4: सब तैयार हो चुका है. हम पंडित जी भी अच्छा करेंगे, हम सब कुछ वो पूजा के मामले में, खाने के मामले में सब कुछ तैयार है. कल्चरल अभी भी चल रहा है प्रिपरेशन, कल्चरल कभी खत्म ही नहीं होता, और हम काफी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वी हैव गॉट इन द कल्चरल इवेंट, वी हैव गॉट मोर देन 77 पार्टिसिपेंट्स दिस टाइम. 77, आई थिंक इट हैज क्रॉस्ड 80 नाउ. 80 पार्टिसिपेंट्स इन आवर कल्चरल इवेंट. और उनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करना, क्योंकि इट टेक्स टाइम.
0: फास्ट फूड भी करना पड़ेगा ना बीच बीच में, फास्ट फूड बटन दबाना पड़ेगा. जी हाँ, टाइम फ्लाइज, और जब परफॉर्मेंसेज वगैरह होती है, एंड देन